सेम कोने शुरू है यंग द रिरे जी सी सिंबदिनी कावे जोंकी लुजु छेमो रिजे ग्याजु छुदी